बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा, नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हरा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे, नंदी पे बैठ गए। और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बरात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे हैं, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आ गए दामे। बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें, कैसे दामाद जी, नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू, डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे।
दामाद जी से कही उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है। अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तो महाराज उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के, और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो? बोल मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहा चाहिए? बोले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। भैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो, कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दू, तू कहेगो मोकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? भैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो, सांप तो
प्रभा के वश में रहे। भैया बोली, बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है क्या? सापन पे नाचे हो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहाँ तू आयो है, जहाँ लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे,

कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं। एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को भरन में ही बुला लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो तब तो बाहर निकालेगी घर से तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम हम भी यही बैठे जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे मैं अपनो काम धंधो संभालू, और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आ, अरे मैया कहा कर रही है? तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करूं? बोले रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई तब भी चुप नहीं हुए, मैया ने पल्ला में झुलाए तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे? गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई है। मैया बोली अब कहा करे? बोले कहा करे का नजर उतारो या की? बोले कैसे नजर उतारे? बोले जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके अभी तक। मैया गई नमक लाई राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी, आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो काना कम रोने चाहिए पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे।

गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुई। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई, या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया अब वा भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकिन यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारेगा। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है। तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे वारो कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आए एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। वो पिराजी हो गई और खुश होती होती मैया, ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी? बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठे हो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कू बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़ी है जी। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छुरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है, वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। बोली लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे।
तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा देखो अभी तक छोरा रो रहा हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छो बाबा एक बात बता, भूत तो तोपे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है एक काम में 10 काम करना चाहती है, कोई एक आयोजन हो एक कार्यक्रम हो उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखना। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगो। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक जा तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के अपने नागन्ने ने थोड़ो संवार के रख समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया अरे यशोदा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो मैया, तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो मैया, बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो नाम रोशन करेगो बड़ो होगो महल बनाएगो तो वो तो या के ना ही होगो मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरा छोरा है अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी मोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है, अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108, अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा मैया जैसा तू सोचे सोच भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं समय है गयो है भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए।
तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा, तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोड़ा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 7 सौ श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है।
1: ये मत कहो खुदा से।
0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड बीके शिवानी जी के विचार।
1: ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
2: क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई है, हमने ध्यान नहीं रखा तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है, फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन थ्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्ले, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट नाइम लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, चार दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है, और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वही ठीक था आश्रम में, तो बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज। हम यहां से विधि सीख कर जाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन। ये चाहे कुछ भी हो जाए मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है रोज, चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा. नो, इट इज डेली. बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड डेली. हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं. तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुककर इसको कभी नरिश ही नहीं किया. आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहां भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखिए. हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर. रियली इट्स एन एपिडेमिक. एवरीवन सेज द सेम लाइन एंड वो इतना डीप बिलीफ सिस्टम बन गया है कि वो एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वेरी बिजी, टाइम नहीं मेरे पास. कभी आप सोचो छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से फील करते हैं उनके जीवन में कमी है. सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है. तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है. वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए. जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है. जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन. जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं. मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है. दो बातों में बहुत फर्क है. और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम टाइम टाइम टाइम पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है. आप जब यहां से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं. जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है. अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है. इतना टाइम आ जाता है. क्यों आ गया? यहां का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई. जैसे यहां की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं उनको खांसी होने लगती है. पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है. आप फिजिकली यहां काम करेंगे, थकावट कम होगी. सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहां और यहां, थकावट तो सारा दिन लगेगी. एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं. और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा. तो यहां से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे, चार्ज्ड. इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है. ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है. कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे. पे कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा। सो इट इज नॉट इजी, ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है, ऐसे नहीं तीन दिन में। तीन दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट दैट इन थ्री डेज इट विल गेट चार्ज्ड, नो। लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको एक घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड। हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन, इसका क्रिएटर कौन, कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स, आवर सेल्फ। जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं, दूसरों पे। हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। ये सबसे बड़ा

टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने. उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं. ये एक सेम बिहेव करता है, चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं. दिस इज स्टिम्युलस, दिस इज रिस्पॉन्स. स्टिम्युलस इज इन देयर कंट्रोल, रिस्पॉन्स इज इन माई चॉइस. आज एक मुक्ति यहां जो चल रहा है, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर एवरी टाइम से दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई क्रिएशन. डोंट पुट द फिंगर ऑन पीपल और सिचुएशंस कि परिस्थिति और लोगों की वजह से मेरा ऐसा हो. ट्रू नहीं है ये बात. They will be their way. I will be my way. फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है, लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है, कौन चूज कर रहा है? मैं. गुलामी का जीवन नहीं जीना, दूसरों के व्यवहार के गुलाम. वो रोज अपना व्यवहार करेंगे, हम रोज डिस्टर्ब होंगे, तो हम उनके व्यवहार के गुलाम, हम उनके व्यवहार के गुलाम. स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट. लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता. वाइफ कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती. पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते, खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े, प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी. सारा दिन खड़े. इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे. हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है. तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं? नेगेटिव. और ब्लेम किस पर डाल देते हैं? एक टीम में पांच लोग हैं. सुबह सुबह एक जना एंटर किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह ऑफिस आ गया. शाम तक बाकी चार में से भी एक को हो गया. तो वो एक ने उसको क्या कहा? मैं बीमार किसकी वजह से हो गया? क्या ये बात सच है? बाकी तीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है. मैं क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वीक है. लेकिन मैंने ये नहीं रियलाइज किया मेरा वीक है, मैंने कहा उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है. तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया. सिमिलरली वो पांच लोग थे, एक एंटर हुआ, मूड खराब है, सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, मूड ही खराब है, घर से झगड़ा करके आया. उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया. ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया. ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन. तो एक इक्वेशन, जो भी यहां चले उसका जिम्मेवार कौन? हम. जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं. जब हम कहेंगे उनकी वजह से तो हम किसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं? उनको. हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? कोई काम कर रहा है, हमने उसको काम करने के लिए बोला, वो टाइम थोड़ा धीरे लगा रहा है, ज्यादा टाइम लग गया, वो ठीक से नहीं कर रहा है, इरिटेट कौन हो रहा है? हम हो रहे. फिर भी उसने ठीक से नहीं किया तो गुस्सा कौन हो रहा है? हम. एंड जब हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी किसकी घट रही है? हम. काम हो जाएगा, काम हो गए, आज बहुत काम हो गए, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, बहुत कुछ कमाया, घर में सब कुछ आ गया,

लेकिन जिस तरह कमाया, इरिटेट होके, क्रिटिसाइज करके, मजाक उड़ा के, किसी की निंदा करके जिस तरह कमाया, उसकी वजह से घर में खुशी, सेहत और रिश्ते घट गए, बाकी चीजें बढ़ गई। और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे। दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन। तो काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना? काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना? ये बैटरी कैसे रहनी चाहिए? चार्ज्ड। ये ग्लास है, भरा हुआ है। इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है। शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना है और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फुल। कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब। देखो आप पीछे, हाथ ही नहीं उठाते। कर सकते हैं ना? करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी। नींबू चम्मच खेला था स्कूल में? गुड। भागना था, भागना था। कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में। लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए, क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे। नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था और हम एंड में पहुंच गए। हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड। क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था। वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है। भागना है, बहुत भागो। जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए। एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया। हाँ, वर्क यहाँ, दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ। ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई। कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले। फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है। रोज उसी रास्ते जाते हैं, रोज उसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लेकिन रोज इरिटेट होते हैं, रोज आसपास के लोगों को कुछ कुछ बोल भी देते हैं बंद गाड़ियों के अंदर। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को तो सुनाई भी नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं। एनर्जी किसकी डिप्लीट हो रही है? मेरी। नींबू गिर गया। राजयोग मेडिटेशन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ध्यान। द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल, ध्यान। अपने मन का ध्यान रखना। आपके आसपास सारे लोग भी अपना नींबू गिरा दे, आपका गिरना नहीं चाहिए। और शाम को जब हम घर आए, बैक टू फैमिली, ये ग्लास कैसा होना चाहिए था? आज दोनों पेरेंट्स घर आ रहे हैं खाली ग्लास के साथ, धन भरपूर, आत्मा रूपी ग्लास खाली, तो बच्चों को क्या देंगे? सामान ही दे सकते हैं ना फिर सिर्फ, क्योंकि सामान भरपूर, शक्ति खाली, दोनों आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आज स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं। ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे?

फिर वो जो भागना भी होगा ना उसको एंजॉय करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है। यहां समान मिलता है, यहां सुकून मिलता है। शाम को हमें सिर्फ सामान कमा के घर नहीं आना है। क्या कमा के घर लाना है? सुकून कमा के घर लाना है। बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए। People should go home happier than what they came in the morning. Then we are sending happy parents home. We are sending happy parents home. And if we send happy parents home, next day morning वो और happy आएंगे. और उसके अगले दिन वो और happy आएंगे. और day by day हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आज क्या हो रहा है? डे बाय डे हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए जब हम चेंज होंगे, हमारा घर का वातावरण चेंज होगा, हमारा वर्क कल्चर भी चेंज हो जाएगा, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों की जीवन बदल जाती है। एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट। बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया। तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है औरों की बैटरी।

शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों रहिए, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा। भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: शायरी पे ध्यान लगाओ। इरशाद, रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
0: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
1: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो, हेलो, टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ही अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees.

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद,
1: ब्रॉडवे बस जैसा आप

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा।

अच्छा चलिए पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिरी बार आप बिना किसी टेंशन के फैमिली या फ्रेंड के साथ पिकनिक पर कब गए थे? याद है? नहीं है ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अगर याद नहीं भी है ना तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की, फिर से सेलिब्रेट कर लेते हैं पिकनिक को। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज नहीं खैर जुलाई जो मंथ है वो डेडिकेट किया जाता है नेशनल पिकनिक मंथ के लिए। और अगर पिकनिक मंथ की मैं बात करूँ तो पिकनिक का मतलब सिर्फ बाहर जाना खाना खाना नहीं होता है, बल्कि अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। समझ तो आप गए ही होंगे कि क्या कहने वाली हूँ मैं। खैर देखिए वैसे भी वीकेंड में आ गया तो फटाफट से एक पिकनिक प्लान कर ही लीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखिएगा जब आप जा रहे हैं कहीं बाहर और अपने साथ अगर पेपर्स या फिर कोई भी पैकेट लेकर जा रहे हैं तो प्लीज अपना कचरा अपने साथ अपने घर लेकर आए और उसे डस्टबिन में ही डंप कीजिए, बिकॉज ये जो मेमोरीज आप क्रिएट करने वाले हो ना आपके साथ साथ हमारे अर्थ के लिए भी हेल्दी होनी चाहिए। और अगर पिकनिक में बात करूँ ना तो बेस्ट मेमोरीज किसी एक्सपेंसिव प्लेस पर नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए सिंपल मोमेंट्स में बनती है, ये जरूर याद रखिएगा। तो हम सब नेशनल पिकनिक मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस वीकेंड थोड़ा अपनी फैमिली को वक्त दीजिए और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा पॉज लीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

भाई बहन चाहे कितने भी लड़ते हो ना, लेकिन एक फैमिली में एक ऐसा कजन तो जरूर होता है जो घर वालों के सामने सीधा साधा बनता है, लेकिन अकेले में अपने सारे सीक्रेट एक दूसरे को बता देता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं लेकर आ गई हूँ नेशनल कजन डे। यानी आज का जो दिन है ना, उन सभी कजन के नाम है जो अपने सारे सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के, कभी पार्टनर इन क्राइम भी कहलाते हैं, और बिना एक दूसरे को जज के हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज एक कहानी हो जाए। तो भाई दो कजन ना हमेशा समर वेकेशन से एक साथ बिताते थे नानी घर, कभी क्रिकेट खेलते थे, लूडो खेलते थे, आम तोड़ना, यहाँ तक कि एक दूसरे से लड़ाई भी करना। फिर जब बड़े होते गए ना तो अलग अलग शहरों में मूव हो गए, किसी को पढ़ाई करनी थी, किसी को जॉब करनी थी, तब जाकर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो बचपन था ना उस बचपन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उन मेमोरीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और इस प्यार को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कहानी हमें ये मैसेज देती है कि बचपन बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, अगर कभी भी मौका मिले ना अपने बचपन को फिर से जीने का तो जी लेना। और बताए कजन डे का ना एक फन फैक्ट भी है। फन फैक्ट ये है कि रिसर्च कहती है कि कजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बचपन की सोशल स्किल और इमोशनल सपोर्ट को भी मजबूत बना सकती है। और भाई अगर कजन की बात करें ना, तो ये आपकी फैमिली भी होती है, फ्रेंड भी होती है, यानी कि घर में ही आपको दोस्त मिल रहा है तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना कि फ्रेंड्स हम चूज करते हैं, लेकिन कजन हमें ये लाइफ गिफ्ट करती है। तो फटाफट से आज ही अपने लाइफ के प्रीशियस गिफ्ट को थैंक यू बोल दीजिए, और बस एक डे आउट प्लान कर लीजिए। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आपने कभी इस रूल के बारे में सुना है? आई नो आपने कभी नहीं सुना था, क्योंकि मैंने भी आज पहली बार सुना है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन जी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक रूल बताने वाली हूँ। और रूल कुछ इस तरह से, अपनी गर्लफ्रेंड की प्लेट का खाना ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है? कभी आपने सोचा ये चीज? देखिए भाई, मैं सिंगल हूँ तो मुझे कभी ये सुनने का सौभाग्य ही नहीं मिला है कि मेरी प्लेट से खाना किसी को अच्छा लगा हो। लेकिन आपको पता है, अपनी प्लेट में वही फ्राइज बहुत ज्यादा नॉर्मल लगते हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड की प्लेट से अगर आप ट्राई करते हो ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रूल के बारे में सोशल मीडिया पर हो रही है इन दिनों बहुत सारी बातें, और सोशल मीडिया पर एक क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और क्लेम ये है कि पार्टनर की प्लेट से खाया हुआ खाना ज्यादा टेस्टी लगता है। कि भाई उस खाने में ऐसा होता क्या है? और अगर बात करूँ ना साइंस की, तो साइंस ने इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से कन्फर्म किया है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब खाना इमोशंस, शेयरिंग और किसी अपने के साथ जुड़ा हो, तो तब हम उस खाने को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। इसके पीछे की बस साइंस इतनी सी है। तो जिस तरह से साइंस ने इसके पीछे की कहानी बताई है ना, वहाँ तो बस एक ही चीज समझ आती है कि प्यार की असली लैंग्वेज कभी कभी आई लव यू नहीं होता, मेरी प्लेट से मत खा भी होता है। तो भाई

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी नाइट आउल हैं या फिर अर्ली बर्ड, बिकॉज आज ना मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पर, जो लोग लेट सोते हैं उनके लिए क्या फायदा है और जो लोग जल्दी सो जाते हैं ना उनके लिए क्या नुकसान है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नाइट आउल और अर्ली बर्ड के बारे में, और अगर आप भी उन लोगों में से है ना जो रात के 2 बजे बोलते हैं बस 5 मिनट और फिर जाकर कहीं सोते हैं, तो आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि लेट सोने वाले कुछ लोग रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लेट तक जागेंगे तब ही आप इंटेलिजेंट बन सकेंगे। तो इसके पीछे का रियलिटी चेक है, और रियलिटी चेक कुछ इस तरह से है। साइंस ये भी कहती है कि 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद दिमाग, मेमोरी और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल। सो माय डियर लिसनर, स्मार्ट बनना है तो सिर्फ लेट मत जगिए, अच्छी नींद भी लीजिए, और अगर आप लेट सोते हैं तो डोंट वरी, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ऑलरेडी साइंस प्रूव कर चुका है। लेकिन अपनी स्लीप साइकिल का ख्याल रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: For you, Sadla Ben. Kim Cho, Majawa. 17, 17 and a half, 18 and a half.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: नींद

0: शानदार सुरक्षा के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। और आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रीति चौधरी फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल। डॉक्टर से आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, बिकॉज कहा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसी डिसीज है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है और जिसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर आज हमें ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और स्पेशली अगर इंडिया में बात करूँ तो विमेन्स के लिए ये कितना बड़ा हेल्थ कंसर्न बन गया है।
1: सो सर्वाइकल कैंसर इज द कैंसर ऑफ द माउथ ऑफ द यूट्रस, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। और ये जो है इट इज वन ऑफ द बर्डन ऑन फीमेल हेल्थ, जिसको इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर है इन इंडिया अमंगस्ट फीमेल्स एंड इट इज वन ऑफ दोज कैंसर विच कैन बी प्रिवेंटेड, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल, जो फीमेल्स में कॉमन गाइनी प्रॉब्लम्स होती हैं वैसे ही होते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर बीच बीच में ही ब्लीडिंग होते रहना, जिसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या फाउल स्मेलिंग, वाइट डिस्चार्ज होना, ये सारी चीजें जो है, या आज के टाइम में ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस। सो इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है कि कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स का कोई पैटर्न नहीं है, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो आपको इमीडिएटली जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
5: बहुत कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस को लेकर। और आज डॉक्टर प्रीति हमें बता रहे हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, किस तरह से इसके सिम्टम्स को पहचानना चाहिए और कब अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो डॉक्टर मुझे ये बताइए कि पैप स्मियर और एचपीवी

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ,

0: शायरी पे ध्यान लगाओ इरशाद। रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
1: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
0: सबका ये, सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
1: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इशांगा सुट्रेक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो लेकर आई थी मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का और अब हम कल नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे सीधा मंडे। जी वीकेंड में आ गए, वीकेंड वाली वाइब ही अलग होती है। वीकेंड में हम लोग सब रेस्ट के लिए जाते हैं, फिर स्टार्ट होकर मंडे वाले दिन वापस आते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए स्पार्क के साथ, एक नई वाइब के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी प्यार सुट्रेक, एंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड। मिलेंगे मंडे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
0: अच्छा, हमें क्या करना है?
1: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ को दे या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
0: उसके बाद
1: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
2: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
1: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर से। पहले शुरुआत है फरीदाबाद की गलियारों की। यहां बात की जाए सबसे पहले मौसम की, तो 10:08 हो रहे हैं और इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस शहर का तापमान बना हुआ है। जहां बात की जाए बारिश की, शुरुआत फिर हो चुकी है, रिमझिम बारिश शहर में कुछ जगहों पर शुरुआत हो चुकी है और कुछ जगह शायद आ जाएगी थोड़ी देर में। बात की जाए एक्यू की, तो एक्यू आज अब फिर से बढ़ता नजर आया, जहां 70, 70 से 89 आज 100। एक्यू कंट्रोल होता बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, जहां बारिश हो जाती है तो एक्यू कंट्रोल हो जाता है, नहीं दो दिन में फिर से बढ़ता हुआ नजर आता। उम्मीद है आज फिर से एक शायद थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, शहर की हवा साफ सुथरी। बाकी ऐसी बहुत सी चर्चाएं शहर से लेकर के आया हूं, लेकिन सुनाऊंगा उससे पहले कुछ खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात की जाए, जैसे कि आप सब जानते हैं, SI डिटेल्स फिल करने के लिए जहाँ 10 दिन डिपार्टमेंट्स की तरफ से और भी बढ़ाए गए थे कि भाई जिनकी डिटेल्स नहीं फिल की गई प्लीज़ डिटेल्स फिल कीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, ना ही वोटर आई कार्ड में, ना ही आपके पहचान पत्र की अगर बात की जाए, देश की नागरिकता की बात की जाए, वहाँ आपको कोई दिक्कत ना आए, कभी आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए कहीं अप्लाई करना है वहाँ कोई दिक्कत ना, तो डिटेल्स फिल करना बहुत ज़रूरी। इसलिए प्लीज़ आज की लास्ट डेट बची, अगर कोई भी शख्स रह गया है SI के फॉर्म फिलअप करने में, प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, अपने नियर सेंटर्स BLO अधिकारी के पास जाइए, वहाँ फिल कीजिए, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ऑन रेडियो मार।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: बन्नो की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं अब्दुलकर सलमान और पूजा हेगड़े की आने वाली कहानी श्री श्री के फर्स्ट लुक पोस्टर और टाइटल रिवील, जो पहले वर्किंग टाइटल DQ41 के नाम से चल रही थी। दुलकन की पैन इंडिया रोमांटिक फिल्म ऑफिशियल श्री श्री रखा गया। इसमें उनके साथ पहली बार पूजा लीड रोमांस करती नजर आई। फिल्म को एक कैंपस स्कूल रोमांस टोन वाली टेंडर लव स्टोरी बताया जा रहा है, जहां दो क्लासमेट जैसे किरदारों के बीच धीरे धीरे केमिस्ट्री और इमोशनल स्टेक्स बढ़ते हैं। पोस्टर में दुलकर और पूजा को एक कंपाउंड टरस दीवार पर साथ बैठे देखा गया, दोनों हल्के ब्लू वाले आउटफिट्स में और दुलकन शाय इंट्रोवर्ट सी बॉडी लैंग्वेज में नीचे देख रहे हैं, जबकि पूजा की एक्सप्रेशन ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश नजर आती है। इससे एक प्यारी जेंटल केमिस्ट्री सेट होती है। रवि कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं, जहां ये कहानी की अगर बात की जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ यूनिक लव स्टोरी सबके सामने बहुत जल्द आने वाली है। रहेगा इसकी रिलीजिंग का इंतजार, बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं मैक्स मेन के बारे में, जहाँ हुसैन मंदिरा बेदी स्टार ऑफ फिल्म रिलीज होने जा रही है। जहाँ बात की जाए इमोशनल फैमिली रिलेशनशिप ड्रामा, ट्रेलर में कहानी को युवा कपल मैक्स और मिन है, जिनका रिश्ता मैक्स की लाइफ से मुश्किल दौर में टूटने की कगार पर पहुंच जाता। कहानी यहीं से शुरुआत होती है जहां कंपेनियनशिप और इमोशनल मोमेंट्स के जरिए हीलिंग की दिशा दी जाती है। देखते हैं यहाँ पे आदिल हुसैन और मंदिरा बेदी इस कहानी को कितने बेहतरीन तरीके से निभाते नजर आने वाले हैं। जहां स्टोरी की अगर बात की जाए तो आज सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, तो इस कहानी को देखिए, लुत्फ उठाइए इस वीकेंड पर। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लिप। यहाँ दोस्तों बात करते हैं पवन सिंह के नए गाने के बारे में। जी हाँ, भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नए सैड सॉन्ग की पहली झलक फर्स्ट लुक लोगों ने बहुत पसंद किया। गाने का नाम है नसीब। कहा जाए नसीब जैसे दर्द भरे गाने के तुरंत बाद पवन सिंह का एक और नया भोजपुरी गाना लेकर आ रहे हैं जिसका पहला पोस्टर रिलीज किया गया। इंतजार आज भी है बस उम्मीद अब नहीं, ये हर लाइन के साथ गाना का इमोशनल टोन सबके सामने आया। बात की जाए तो यहाँ पे नसीब कनेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे महिमा सिंह वाली जोड़ी के दर्द भरे एक्टिंग मांट का जिक्र है ताकि यह सेट हो कि पवन अभी पूरी तरह हॉट ब्रेक जोन वाले गानों में जुड़े हुए। गाने की बात करें पवन सिंह के लास्ट गाना और अब आने वाला नसीब, दोनों ही अच्छा खासा प्यार बटोरता नजर आ रहा है। पवन सिंह की अगर बात करें तो बढ़िया बढ़िया गाने हमेशा लेकर आते हैं, ये दोनों हाइप गाने कुछ ज्यादा ही बटोरते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
0: अच्छा, हमें क्या करना है?
1: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ को दें या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
0: उसके बाद
1: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
2: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
1: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: अगर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

है। इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर में आज जिनका बर्थडे है उनकी अगर बात की जाए। हिंदी सिनेमा का वो महान कलाकार जिन्होंने देशभक्ति को सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दिल में जिंदा कर दिया। जी हाँ, उन्हें लोग प्यार से भरत कुमार के नाम से जानते हैं। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती बल्कि देश के प्रति प्यार, ईमानदारी और संस्कारों का संदेश भी देती हैं। बात करूंगा मैं उस कलाकार की जो लेजेंडरी एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और राइटर। भरत कुमार नाम ले दिया तो वैसे आप सब समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सुनाता हूँ कुछ खूबसूरत से गाने और इसके बाद बताऊंगा कि आज के स्टार की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी भी है, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और ट्रैक।

रिकॉर्ड हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। गुड।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्म फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं हम आज सिनेमा कैलेंडर में भरत कुमार, यानी कि हमारे सबके दिलों के अजीज मनोज कुमार साहब। 24 जुलाई 1937 को जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था। जहाँ उनकी बात की जाए, भारत आने के बाद बचपन की मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन और राइटिंग में भी कमाल दिखा। देशभक्ति और उनकी फिल्मों की पहचान बन गई और इसी वजह फैंस ने उन्हें भरत कुमार का नाम दिया। यहाँ बात की जाए तो मनोज कुमार की करियर की कुछ अमर फिल्में शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी कहानियां जो हर भारतीय के दिल को छू जाती है। ऐसी नई कहानियों के कुछ गाने, मेरे देश की धरती है प्रीत जहां की रीत सदा, ये गीत आज भी देशभक्ति की पहचान माने जाते हैं। मनोज कुमार साहब के बारे में ऐसी और कुछ और चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन सुनाता हूं उससे पहले कुछ और खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और दूसरा सिनेमा के कैलेंडर में हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार साहब। जब मनोज कुमार साहब को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री और भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने सिनेमा के माध्यम से देशभक्ति को एक नई पहचान दी। आज भी जब देशभक्ति पर आधारित फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहले मनोज कुमार साहब का नाम याद आता है। आइए आज इस महान कलाकार को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी फिल्मों के माध्यम से देश प्रेम की उस भावना को सलाम करें जिसे उन्होंने हमेशा जीवित रखा। कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों नहीं बनाते, वो एक सोच, एक भावना और एक युग बना जाते हैं। मनोज कुमार ऐसे ही अमर कलाकारों में से एक है। बाकी ऐसी अभी चर्चा लेकर के आता रहूंगा लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन सेम टाइम सेम जगह। तब सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सोचो, एक आम सा लड़का जो बैंगलोर की सड़कों पर बस कंडक्टर की नौकरी करता था, क्या कभी सोच सकता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे थलाइवा के नाम से जानेगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत की। 12 दिसंबर 1950, यही दिन था जब बैंगलोर में शिवाजी राव गायकवाड़ का जन्म हुआ। एक सिंपल मराठी फैमिली, लिमिटेड पैसे और बचपन से ही स्ट्रगल्स का पहाड़। माँ का साया जल्दी उड़ गया और जिंदगी ने बहुत जल्दी जिम्मेदारियां दे दी। कूली का काम किया, कारपेंटर बने और फिर बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बस कंडक्टर की जॉब मिली। लेकिन उनके अंदर एक एक्टर छुपा था जो हर टिकट के साथ अपना सपना भी बांट रहा था। उनका टिकट देने का स्टाइल इतना अलग था कि लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए बस में चढ़ जाते थे। शायद तभी किस्मत ने डिसाइड कर लिया था कि ये आदमी सिर्फ बस नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलाएगा। और कैसे बने वो सुपरस्टार, उस तक पहुंचने से पहले और भी बहुत सी कहानियां बाकी है। तो करेंगे सुपरस्टार यानी कि थलाइवा रजनीकांत के बारे में और भी बात। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी,

मीथू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी, ओ तेन

0: लेके चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
0: रेडियो महारानी।

हर किसी की लाइफ में एक ना एक दोस्त जरूर होता है जो उसका बहुत ज्यादा करीबी होता है और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक दोस्त दे देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली सुपरस्टार थलाइवा यानी कि रजनीकांत की। रजनीकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका एक दोस्त था राज बहादुर। उन्होंने उनके अंदर के एक्टर को पहचाना। उनके दोस्त ने कहा तू बस कंडक्टर नहीं हीरो बनने के लिए पैदा हुआ है। और बस रजनीकांत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। चेन्नई के मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। पैसे तक दोस्त ने दिए थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई लेजेंडरी डायरेक्टर के बालाचंद्र से। उन्होंने रजनीकांत को देखा और कहा तमिल सीखो तुम्हारी किस्मत तमिल सिनेमा में लिखी है। फिर क्या था 1975 में फिल्म अपूर्वा रागंगल से डेब्यू हुआ। छोटा रोल था लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी बड़ी थी कि सबकी नजर सिर्फ उन पर टिक गई। हीरो नहीं विलन नहीं कुछ अलग एक ऐसा चेहरा जो सिनेमा का रूल बुक ही बदलने वाला था। और आगे क्या हुआ करेंगे इसके बारे में बात मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में जब भी कोई इंसान आता है तो या तो वो हीरो बनता है या फिर वो विलन बनता है या फिर सपोर्टिंग रोल्स में रहता है। मगर एक इंसान अपना सिग्नेचर बना जाता है, यानी कि अपना एक स्टाइल बना जाता है, और आज हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। सिगरेट हवा में उछाल कर मुंह में पकड़ना, सनग्लासेस को स्टाइल से घुमाना, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये रजनीकांत का सिग्नेचर था। शुरुआत में उन्हें विलन और सपोर्टिंग रोल्स मिले, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें हीरो बना दिया। फिल्म थी बिल्ला, मुरत्तु कालाई और फिर बादशाह। यहीं से रजनीकांत सिर्फ एक्टर नहीं रहे, एक फिनोमिना बन गए। साउथ इंडिया में लोग उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाने लगे, उनके कटआउट्स मंदिर जैसे पूजे जाने लगे। उनकी फिल्म रिलीज होना मतलब फेस्टिवल, टिकट मिलना मतलब लॉटरी। उन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं जीता, लोगों के दिलों में परमानेंट एड्रेस बना लिया, और तब दुनिया ने कहा ये एक्टर नहीं, ये इंसान एक इमोशन है। और आगे कैसे वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले गए, करेंगे इसके बारे में और भी बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर एक गाना सुनिए। इस गाने को वापस आकर कामयाबी की उड़ान में रजनीकांत जी के बारे में और भी बातें चलती रहेंगी मेरे दोस्त।

जिस इंसान को लोग भगवान की तरह पूछते हैं उसकी जिंदगी में भी अंधेरे आते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द थलाइवा द लेजेंड रजनीकांत की। 90s के एंड और साल 2000 में रजनीकांत ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ गहरा रुख लिया। हिमालयस जाना, मेडिटेशन करना, सिंपल लाइफ जीना, ये सब उनकी रियलिटी थी। हेल्थ इश्यूज भी आए। 2011 में उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। सिंगापुर तक ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। इसी बीच पॉलिटिक्स में की बातें भी गर्म हो रही थी। फैंस चाहते थे कि थलाइवा अब स्क्रीन नहीं सिस्टम बदले, लेकिन रजनीकांत ने हर बार एक ही बात कही, जो होगा वक्त बताएगा। एक सुपरस्टार जो फेम के बीच भी अंदर से एक सिंपल इंसान बना रहा, और कैसे उनका जेलर तक का सफर आज भी रूल कर रहा है, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अक्सर लोग अपनी बढ़ती उम्र की वजह से परेशान रहते हैं, मगर उसी के बीच कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं एज सिर्फ नंबर होती है, और रजनीकांत ने इसका जिंदा सबूत दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और कामयाबी की उड़ान में आज हम लोग बात कर रहे हैं सुपरस्टार थलाई हुआ यानी कि रजनीकांत की। जब लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं ना, तब रजनीकांत ब्लॉकबस्टर देते हैं, कबाली, रोबोट 2.0, दरबार और फिर जेलर। साल 2023 में जेलर ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। नई जनरेशन ने भी मान लिया असली स्वैग क्या होता है। 72 प्लस की एज में भी उनकी एंट्री पर थिएटर्स फट जाते हैं। उनका डायलॉग, उनका वॉक, उनका ऑरा, सब कुछ टाइमलेस है। बस कंडक्टर से मेगा स्टार, स्ट्रगल से सुपरस्टारडम और इंसान से लेजेंड। रजनीकांत सिर्फ नाम नहीं, एक एरा है। और कुछ लोग कहते हैं लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो बस और आइकॉनिक होते जाते हैं। तो ये थी कहानी सुपरस्टार थलाई वा रजनीकांत की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। मैं गीत हूँ और आज मैं आपको बिजनेस अनप्लग्ड में कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसे दौर की कहानी जब इंडिया का रोजमर्रा का खाना बहुत सिंपल था लेकिन चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। हमें जाना होगा इसके लिए लगभग 90 से 100 साल पीछे उस इंडिया में जो ब्रिटिश रूल के नीचे था, उस टाइम पे जहां सुबह की चाय होती थी लेकिन साथ में जो चीज अंग्रेज खा रहे थे वो आम इंडियंस के लिए एक क्लोज्ड दुनिया थी। वो चीज एक बॉक्स में आती थी, बॉक्स का नाम होता था हंटले एंड पामर्स। ये बॉक्स बड़ी बड़ी स्टोर्स से निकलता, सीधा अंग्रेज ऑफिसर्स के घर जाता, उनके बंगलोज, उनके क्लब्स और उनके महलों तक, और सुबह की चाय के साथ वो खाया जाता और इंडियंस बस देखते रह जाते। उन्हें पता ही नहीं होता था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, टेस्ट कैसा है और ये चीज कुछ लोगों के लिए है। उस वक्त वो चीज खाना नहीं थी, वो स्टेटस सिंबल थी जो अंग्रेज खा रहे थे और हम नहीं। और यहीं पर ये कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसी गैप को सबसे पहले नोटिस किया एक इंडियन ने। नाम था लाला राधा किशन, जिन्हें कई जगह लाला राधा मोहन भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार ये सोचा कि जो चीज अंग्रेज रोज यूज कर रहे हैं वो इंडियन घरों तक क्यों पहुंच नहीं सकती। सोचो जरा, जब मार्केट ही नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं और ब्रिटिश ब्रांड्स का पूरा कंट्रोल है, उस टाइम पे इस तरह सोचना कितना बड़ा रिस्क होगा। लोग हंस रहे थे, मार्केट रेडी नहीं थी और ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम था। पर यहाँ ये कहानी रुकती नहीं है, ये सिर्फ एक सोच थी, असली एक्सपेरिमेंट अभी शुरू होना बाकी था और इसी एक्सपेरिमेंट से आगे चलकर एक ऐसी चीज जन्म लेगी जो डिकेड्स के बाद भी हर मिडिल क्लास घर का हिस्सा बन जाएगी। पर कैसे, ये जानेंगे हम इस गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ और जो इमोशन की मैं बात कर रही थी ना, ये है बिस्किट। चाय कंप्लीट करता है, जिस बिस्किट के बिना शाम थोड़ी अधूरी लगती है। एक टाइम था जब वो सिर्फ अंग्रेजों की प्लेट तक सीमित था। उस वक्त इंडिया में बिस्किट का मतलब था फॉरेन बॉक्स, फॉरेन टेस्ट और फॉरेन कंट्रोल। इंडियन बिस्किट्स को जानते भी नहीं थे। फिर इसी बीच एक इंडियन के माइंड ने पहली बार सोचा, हम भी क्यों नहीं। नाम था लाला राधा किशन। इन्होंने सबसे पहले एक देसी बिस्किट बनाने की कोशिश की। इस बिस्किट का नाम था द हिंदू बिस्किट। ये दिल्ली में लगभग 1898 के आसपास की बात है। आइडिया स्ट्रॉन्ग था, इंटेंट ऑनेस्ट था, पर टाइम टफ था। मार्केट रेडी नहीं थी, लोग बिस्किट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आते गए। फॉरेन ब्रांड ज्यादा पावरफुल थे, डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में था और रिजल्ट द हिंदू बिस्किट ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी एक फेलियर सिर्फ पॉज होता है, एंड नहीं। फिर आया एक बड़ा मोमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। महात्मा गांधी ने जब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी का नारा दिया तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बदली, माइंडसेट बदलने लगा। लोग सोचने लगे, जो हम रोज यूज करते हैं क्या वो हम खुद नहीं बना सकते। और ये सोच सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, ये सोच गुजरात तक पहुंची और गुजरात में एक टेलर तक। एक सिंपल सा आदमी रोज सिलाई करता था, कपड़ों से घर चलाता था, पर स्वदेशी के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अंग्रेज बिस्किट बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उस टेलर का नाम था मोहनलाल दयाल। इन्होंने सपना नहीं देखा, इन्होंने पॉसिबिलिटी देखी और वहीं से इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। एक टेलर, एक बिस्किट और एक देसी ड्रीम, कैसे आगे बढ़ती है ये कहानी, कैसे एक छोटी सोच एक बड़ी हैबिट बन जाएगी, जानेंगे हम थोड़ी देर बाद। पहले सुनते हैं गाना, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। बिल्कुल हम सफर में हैं और गाना है फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं एक बिस्किट की, नाम है पार्ले जी। साल था 1900। गुजरात के वालसाड से एक 12 साल का लड़का मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। ना कोई सूटकेस, ना कोई बैकअप प्लान, बस एक चीज थी, काम सीखना है, जिंदा रहना है। मुंबई में इस लड़के ने सिलाई सीखी, कपड़ों के बीच सुई धागे के साथ रोज का दिन निकालता रहा। सिलाई सीखने के बाद कुछ दिन दूसरों की दुकानों पर काम किया, ऑब्जर्व किया, सीखा और चुपचाप ग्रो करता गया। 6 साल बाद जब वो लड़का 18 साल का हुआ तो मुंबई के गांव देवी एरिया में उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली और यहीं से इसकी जिंदगी ने स्पीड पकड़नी शुरू की। वो सिर्फ टेलर नहीं रहा, वो बिजनेस समझने लगा। कुछ ही सालों में इन्होंने 2 कंपनीज खड़ी कर दी थी और धीरे धीरे वो लड़का मुंबई के सिल्क मार्केट में एक पहचान बन गया। नाम था मोहनलाल दयाल।
सिल्क का काम चल रहा था पर दुनिया बदल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, मार्केट्स हिले, सप्लाई रुक गई और तब मोहनलाल दयाल ने एक बड़ा डिसीजन लिया, सिल्क बिजनेस बंद। वो अपने 5 बेटों के साथ एक नया रास्ता सोचने लगे और इसी बीच स्वदेशी मूवमेंट दिल और दिमाग दोनों में था। इन्होंने सोचा बिस्किट सिर्फ अंग्रेज खा रहे हैं, इम्पोर्टेड, महंगे, आम आदमी से दूर। मोहनलाल दयाल ने सोचा अगर खाना है तो सबके लिए होना चाहिए ना। 1928 में इन्होंने एक कन्फेक्शनरी कंपनी शुरू की, नाम रखा गया हाउस ऑफ पार्ले। सीखने के लिए जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ कन्फेक्शनरी बनाना सीखते हैं। 1929 में 60,000 रुपए की मशीन खरीद कर इंडिया लौट आए, फैक्ट्री शुरू की, पहली बनी ऑरेंज कैंडी। और फिर 1939 में मोमेंट आया जब बिस्कुट बनाना शुरू हो गया। उस वक्त मार्केट पर ब्रिटिश ब्रांड्स का राज था, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने एक अलग बात सोची, सस्ता, देसी, हर किसी के लिए। इंडिया में बना, इंडियन लोगों के लिए बना और बस यहीं से एक बिस्किट आदत बन गया। जो अंग्रेजों की टेबल से निकला वो इंडियन चाय के साथ घर घर पहुंच गया। और ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, इमोशन था, यही था पार्ले का असली बेस। और आगे की कहानी गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी के सफर की। पार्ले का सफर शुरू हुआ एक स्मॉल स्केल से, एक टेलर के विजन से जो सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए कुछ टेस्टी और अफोर्डेबल क्रिएट करना चाहता था। 1929 में शुरू हुई फैक्ट्री में पहली चीज बनी ऑरेंज कैंडी, बच्चों के लिए, घर घर के लिए सिंपल स्वीट। पर 1939 में बिस्किट बनना स्टार्ट हो गया, मार्केट टफ थी, ब्रिटिश ब्रांड डोमिनेट कर रहे थे, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने सोचा हर इंडियन के लिए एक देसी बिस्किट और इसी सोच के साथ पार्ले जी का फाउंडेशन बना, एनर्जी रिच, पॉकेट फ्रेंडली और इजी टू ईट। लोगों ने इसे तुरंत अपनाया। 1950 से 1960 में पार्ले ने स्नैक्स और कैंडीज एक्सपेंड किए, मोनाको, किसमी, पॉपिंस, हर प्रोडक्ट सिंपल, टेस्टी और अफोर्डेबल। और 1980 ये वो वक्त था जहां पार्ले ग्लू को ऑफिशियली बना, यानी कि पार्ले जी, जी का मतलब था ग्लूकोज, एनर्जी का सिंबल। बचपन से लेकर एडल्ट तक हर कोई इस बिस्किट को पसंद करने लगा और मार्केटिंग भी काफी इनोवेटिव थी, शक्तिमान, छोटी बच्ची का एड, सिंपल और मेमोरेबल। हर घर में पार्ले जी हर चाय के साथ एक हैबिट बन गई। आगे 1990 से 2000 में चॉकलेट, नमकीन, स्नैक्स और ग्लोबल एक्सपेंशन, अफ्रीका, मेक्सिको। पार्ले ने बस इंडिया तक सीमित रहने से मना कर दिया। पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं था, ये इमोशन, कम्फर्ट और एक आदत भी बन गया था। हर लॉकडाउन, हर स्ट्रीट, हर ट्रेन जर्नी में ये बिस्किट साथ था। और सोचो ये सब एक टेलर का सिंपल आइडिया था, एक सोच से, एक विजन से हर इंडियन को अपना बिस्किट मिले। ये कहानी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है, एक ड्रीम और देशभक्ति की भी है। स्मॉल बिगनिंग्स, जायंट इम्पैक्ट। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। गाना है फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी की कहानी के बारे में। पार्ले जी सिर्फ टेस्ट और क्वालिटी के लिए फेमस नहीं था, ये हर इंडियन के लिए एसेसिबल बनने के लिए फेमस था। छोटे बजट वाले घर, स्कूल, बच्चे, स्ट्रीट वेंडर्स, सबके लिए बिस्किट अफोर्डेबल था। और यही डेलिबरेट स्ट्रेटेजी थी मोहनलाल दयाल की, बिस्किट को महंगा बनाने से फायदा नहीं है बॉस, सबको खाना मिले तभी इम्पैक्ट और लॉयल्टी बनती है। और इसीलिए पार्ले जी ने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्राइस मेंटेन किया, रिजल्ट हर इंडियन की चाय का कंपेनियन बन गया, हर ट्रेन जर्नी, हर स्कूल लंच, हर टी स्टॉल के साथ। और इसी अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ने पार्ले जी को एक नेशनल हैबिट और एक इमोशन से कनेक्ट कर दिया। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। वैसे जब पूरी कोशिश की जाती है तो जीतना मुमकिन हो जाता है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही थी पार्ले जी के सफर की। पार्ले जी का सफर सिर्फ एक बिस्किट बनाने तक सीमित नहीं था, ये कहानी है विजन और स्ट्रगल की। सोचिए एक 12 साल का लड़का गुजरात से मुंबई आता है सिर्फ सिलाई सीखने, जिंदा रहने के लिए, और वही लड़का मोहनलाल दयाल इंडिया के लिए एक ब्रांड खड़ा करता है जो आज भी हर घर, हर चाय, हर स्कूल लंच का पार्ट है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने एक आइडिया को कल्चर में कन्वर्ट किया, अफोर्डेबल, एसेसिबल और देशभक्ति से इंस्पायर्ड। और ये तीन पिलर्स ही पार्ले जी को दुनिया भर में फेमस बनाते हैं। और ये भी याद रखिए, ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी फेलियर, एक्सपेरिमेंट और पेशेंस की है। पहली कैंडीज फेल हुई, पहला बिस्किट फ्लॉप हुआ और फिर भी विजन का पीछा नहीं छोड़ा। और इसी वजह से पार्ले जी का मैजिक है हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करना, हर इंडियन के लिए फैमिलियर रहना और एक सिंपल
सिंपल स्वीट हैबिट बन जाना। तो अगली बार जब भी आप पार्ले जी के साथ चाय पिएं या ट्रेन जर्नी में बिस्किट खाएं, तो अपने बचपन को याद करो और सोचो एक छोटा टेलर, एक ड्रीम और एक देशभक्ति का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ये था सफर 12 साल के लड़के का, एक देसी बिस्किट ब्रांड का, एक इंडियन ड्रीम का और एक ग्लोबल इंस्पिरेशन का। आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड और मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हट के। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ है बिजनेस अनप्लग्ड। वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ और जो इमोशन की मैं बात कर रही थी ना, ये है बिस्किट। चाय कंप्लीट करता है, जिस बिस्किट के बिना शाम पीछे एक इंडियन के माइंड ने पहली बार पाया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, कभी कभी एक फेलियर सिर्फ पॉज होता है, एंड नहीं। फिर आया एक बड़ा मोमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। महात्मा गांधी ने जब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी का नारा दिया तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बदली, माइंडसेट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं आज बात करने वाली हूँ उस इंसान की जिसने अपने विजन, डेडिकेशन और पैशन से इंडिया में टेक की दुनिया को रिडिफाइन किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिव नादर की। शिव नादर जो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े विजनियर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक है, जिन्होंने 1976 में HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की शुरुआत की, बस अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से गैराज में। उस टाइम इंडिया में कोई भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं रहा था और वही छोटी शुरुआत धीरे धीरे बन गई इंडिया के टेक रेवोल्यूशन की पहचान। अब कंपनीज की बात करें, HCL जो आज ग्लोबल टेक जायंट बन चुका है, सिर्फ सॉफ्टवेयर या IT सर्विस नहीं करता बल्कि IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, कंसल्टिंग और इमर्जिंग टेक प्रोजेक्ट्स में भी काम करता है। HCL का टर्नओवर आज $12.8 बिलियन के आसपास है और 60 देशों में फैली हुई कंपनीज में 2,25,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन शिव नादर सिर्फ HCL के लिए नहीं जाने जाते, इनके पास है मल्टीपल वेंचर्स, टेक इनिशिएटिव्स जो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं और साथ ही इनका फिलैंथ्रोपिक वर्क भी इक्वली बड़ा है। शिव नादर फाउंडेशन ने अब तक सीधे 36,000 बच्चों की जिंदगी बदली है और इस फाउंडेशन में इन्होंने $1.1 बिलियन का एंडोमेंट दिया है। सो इमेजिन करो, एक आदमी जो छोटे से शहर से आया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गैराज में कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता रहा और आज इनके पास है वर्ल्ड क्लास टेक एम्पायर, ग्लोबल रीच और समाज के लिए करोड़ों की फिलैंथ्रोपी। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स और कंपनीज की नहीं है, ये कहानी है विजन, स्ट्रगल, स्मार्ट डिसीजन और रिलेंटलेस डेडिकेशन की। शिव नादर ने साबित किया कि स्मॉल बिगनिंग भी ग्लोबल इम्पैक्ट में बदल सकती है, बशर्ते आपके पास पेशेंस और विजन हो। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं डाइव करने वाली हूँ इनके अर्ली स्ट्रगल्स, गैराज डेज और वो स्ट्रेटेजी जो इन्हें इंडिया के टॉप लीडर्स में से एक बनाती है। और ट्रस्ट में, ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि रियल हसल क्या होता है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड. और जिन लोगों ने अभी सुनना मुझे शुरू किया है, मैं बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ शिव नादर के बारे में. और अब मैं जाने वाली हूँ उस पार्ट में जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग था, शिव नादर के अर्ली डेज और चाइल्डहुड. तो पिक्चर करो, साल 1945, तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर. यहाँ पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम था शिव नादर. बिल्कुल साधारण परिवार में, कोई बड़ा प्रिविलेज नहीं, कोई फैंसी अपब्रिंगिंग नहीं, लेकिन बचपन से ही इनके अंदर क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी का लेवल कुछ

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: कुछ हटके, कुछ हटके।
2: एवरीवन और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी
0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं शिव नादर के बारे में। वही स्मॉल गैराज, वही एक्सपेरिमेंट्स और वही पैशनेट हसल। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन। शिव नादर और उनकी टीम के एफर्ट्स ने SCL को ग्रेजुअली इंडिया की टेक इंडस्ट्री में स्टैंड आउट प्लेयर बना दिया। फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, वो कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने वाले मोमेंट्स थे। हर प्रोजेक्ट ने इन्हें थोड़ा बड़ा विजन दिया और स्लोली वो सोचने लगे, क्यों ना सिर्फ इंडिया में सिर्फ कंप्यूटर ही बने बल्कि कंप्लीट टेक इकोसिस्टम डेवलप हो। और तभी शिव नादर ने अडॉप्ट किया कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग का वो लेवल जिसने SCL को स्ट्रक्चर ग्रोथ, प्रोसेस ड्राइवन ऑपरेशंस और ग्लोबल एक्सपेंशन की दिशा में ले जाना शुरू किया। प्रोजेक्ट्स बढ़े, एम्प्लॉयज बढ़े और धीरे धीरे कंपनी का फुटप्रिंट 60 कंट्रीज तक फैल गया। थिंक अबाउट इट, जो शुरुआत थे सिर्फ कैलकुलेटर्स और माइक्रो प्रोसेसर से, वो अब सॉफ्टवेयर सर्विस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और कंसल्टिंग में ग्लोबल लीडर बन चुके थे। टर्नओवर लगभग $12.8 बिलियन, एम्प्लॉयज 2,25,000 प्लस ग्लोबली। बट शिव नादर के लिए सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं थी, इनके विजन में हमेशा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्लस इनोवेशन प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल थी। और इसी वजह से इन्होंने शिव नादर फाउंडेशन की शुरुआत की, जो एडुकेशन और सोसाइटी को एम्पावर कर रही है। अब तक 36,000 बच्चों की लाइफ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एंडोमेंट उनके पास है। तो दोस्तों, ये जर्नी है फर्स्ट बैग सक्सेस, स्केलिंग स्ट्रेटजीज, ग्लोबल एक्सपेंशन और विजन ड्राइव ग्रोथ की। एक छोटा सा गैराज, स्लीपलेस नाइट, फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट और अब एक ग्लोबल टेक एम्पायर और फिलैंथ्रोपिक लेगेसी। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। शिव नादर की स्टोरी हमें सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती बल्कि ये बताती है कि हम्बल बिगिनिंग्स प्लस रिलेंटलेस हसल प्लस विजन मिलकर किसी इंसान को लेजेंडरी बना सकते हैं। तो ये कहानी है एक विजन की, एक सोच की और उस भरोसे की, जो छोटे से आइडिया से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंचा। मैं हूं गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। मैं मिलूंगी आपसे अब कल, जहां ढेर सारी बातें करेंगे एक नए बिजनेस टाइकून के साथ। और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी किसी ऐसी जगह को देखा है जो दूर से सच कम और ख्वाब ज्यादा लगी, जहां पानी के बीच एक महल चुपचाप खड़ा हो, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दिन में सूरज की रोशनी उसे सोना बना देती है और रात में वो चांद का अक्स लगता है। वो कहा है कि कुछ जगह है सिर्फ देखी नहीं जाती, वो आंखों में उतर जाती है। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी अंजलि और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम चल रहे हैं पिंक सिटी, जयपुर के दिल में बसी एक मिस्टीरियस और खूबसूरत जगह की तरफ, जिसका नाम है जल महल। अब सवाल ये है कि पानी के बीचों बीच आखिर ये महल क्यों आया? तो सोचिए जरा, एक महल और वो भी झील के बिल्कुल बीच में।

अब बात जल महल की करे तो ये महल बना था 18th सेंचुरी में महाराजा माधव सिंह के दौर में। ये महल असल में रॉयल डक हंटिंग लॉज के रूप में यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जयपुर की पहचान बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जल महल के 5 फ्लोर हैं, पर जब आप इसे देखते हैं तो सिर्फ 1 फ्लोर नजर आता है। अब बात आई बाकी, मतलब बाकी के फ्लोर पानी के अंदर। कुछ खूबसूरतियां पूरी दिखाई नहीं देती, शायद इसलिए और भी खूबसूरत हो जाती है। जब बात हो ही रही है इस जादुई महल की, तो वापस आकर जानेंगे आर्किटेक्चर का जादू क्या है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम पहुँच गए हैं किंग सिटी यानी जयपुर के जल महल। और अगर इस महल की बात करें तो आइए चलिए जानते हैं इस महल का आर्किटेक्चर का जादू। जल महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल मिक्स है। लाल सैंडस्टोन से बना ये महल अपनी सिमेट्री और सिंप्लिसिटी का मास्टरपीस माना जाता है। फिर बात करें छतरिया, मेहराब और उनका पानी में रिफ्लेक्शन, जैसे आर्किटेक्चर और नेचर एक साथ पेंटिंग बना रही हो। और जब मॉनसून में लेक बाहर जाती है तो महल लिटरली पानी पर तैरता हुआ लगता है। वो कहा है कि पत्थर भी कभी कभी इतने खूबसूरत लगते हैं कि वक्त उन्हें तोड़ने की बजाय संभाल कर रखते हैं। अब बात कर रहे हैं इस लेक की, तो आइए जानते हैं मानसागर लेक की कहानी। जिस लेक में जल महल बसा है उसे कहते हैं मानसागर लेक। ये आर्टिफिशियल लेक थी जो पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, पर धीरे धीरे ये महल और लेक जयपुर का पोस्ट कार्ड बन गए। सुबह के वक्त जब सूरज का रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है तो पूरा सीन सिनेमैटिक लगता है, जैसे कोई ओल्ड रॉयल फिल्म चल रही हो। लेकिन ये महल सिर्फ अपने आर्किटेक्चर की वजह से नहीं जाना जाता, ये महल अपने अंदर बहुत सारी मिस्ट्री एंड साइलेंस छुपाए बैठा है, जिनके बारे में बातें करेंगे वापस आकर। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे इसलिए आपके साथ। और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं जल महल के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है सबसे मिस्टीरियस बात क्या है? आज भी लोग जल महल के अंदर फ्रीली नहीं जा सकते, दूर से सब उसे देखते हैं, पर अंदर की दुनिया अब भी काफी हद तक हिडन है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से जल महल और भी मैजिकल लगता है। वो कहा है कि हर खूबसूरत चीज का थोड़ा मिस्टीरियस होना जरूरी है। अब बात करें राजस्थान की शाम, तो शाम के वक्त जल महल के आसपास की हवा ही अलग लगती है। रोड साइड चाय, राजस्थानी म्यूजिक, ठंडी हवा और सामने लेक में चमकता महल। एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे वक्त भी धीरे धीरे चलने लगा हो। वो कहा है कि कुछ शामें आवाज नहीं करती, बस याद बनकर रह जाती है। इसलिए शायद इस जगह को माना जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज। इस बारे में भी वापस आकर बातें करेंगे, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम पहुंच गए हैं पिंक सिटी यानी जयपुर के जल महल। बाद हमने बहुत सारी की आज इस महल के बारे में और आपको ये भी बताया कि इस महल को कहा जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज यानी फोटोग्राफर्स के लिए जल महल हेवन माना जाता है। सनराइज सनसेट रिफ्लेक्शन शॉट्स, हर एंगल से ये महल अलग मूड क्रिएट करता है, कभी रॉयल कभी लोनली कभी ड्रीमी, जैसे एक महल नहीं एक इमोशन हो। और शायद यही रीजन है कि अपने साथ ये महल कल्चर एंड आइडेंटिटी लेकर चलता है। जल महल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये राजस्थान की रॉयल एलिगेंस का सिंबल है। एक रिमाइंडर कि इंडिया में आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, कहानियां होती है। और हर कहानी में पानी हवा रोशनी और वक्त अपना रोल प्ले करते हैं। और शायद यही वजह है कि जल महल हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है कि हर चीज को पास जाकर समझना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें दूर से ही दिल में उतर जाती हैं। वो कहा है कि हर महल में शान नहीं होती, कुछ में सुकून भी होता है। और जल महल भी उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ पानी भी कहानी सुनाता है। अगर कभी आप जयपुर जाओ तो जल महल के पास थोड़ी देर जरूर रुकना, हो सकता है वहाँ की हवा आपके अंदर के शोर को थोड़ा कम कर दे। इसी के साथ

तब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।
2: इतनी

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: शाम जब होती है ना, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अब फटाफट से घर पहुंच जाए, मगर फिर वो घर का रास्ता पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा लंबा लगने लगता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? बस मैं ये बताने आया था कि मैं आ गया हूँ एंड अभी खूब सारे बढ़िया बढ़िया वाले गाने चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड हाँ, देखो एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग ट्रैफिक में कहीं पर फंसे हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। नंबर है जी मेरा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

एक बात सच सच बताना कि क्या आप लोगों को भी लगा था कि आज बारिश हो जाएगी? मेरा तो बड़ा मन कर रहा था कि आज बारिश हो और मैं भीगू इस बारिश में, बट हो कहाँ रही है ढंग से, समझ ही नहीं आ रहा इस मौसम का कुछ भी हाल। ऐसा लग रहा है वो जो डोसे का तवा होता है ना, बड़ा सा, आपने देखा होगा पहले पानी का एक छमका मारा जाता है, छमका एज इन लाइक हल्का सा पानी स्प्रे किया जाता है उस पर, फिर उसके बाद वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आज सुबह से ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और भाई लोग, आज तो फ्राइडे है ब्रो, कोई तो प्लान्स होंगे आप लोगों के? नहीं नहीं नहीं नहीं, बता दो लाइक मुझे बता दो या फिर अपने दोस्तों को बता दो, कहीं ना कहीं के प्लान जरूर होंगे। और देखो, दिल्ली अगर घूमने जाने की सोच रहे हो तो बच जाना, क्योंकि देखो 17 स्टेशन आज भी बंद रखे गए हैं और यू नो वेरी वेल व्हाई, क्यों रखे गए बंद, खैर उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, आगे बात करते हैं। रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक गाने चलाऊंगा, 3 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ। आप लोग एक काम कीजिएगा, कहीं पर भी ना आज गाड़ी लगाइएगा अपनी और एक बेस्ट खाने की चीज़ उठाइएगा वहाँ से, मार्केट से, मार्केट के पास गाड़ी लगाइए, वहाँ से उतर के जाइए और अपने बेस्ट खाने की चीज़ उठाइए और उसको आराम से घर जाके परिवार वालों के साथ बैठ के खाइए, है कि नहीं? चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो नंबर है जी मेरा 9654890।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

अंग्रेज आए थे इंडिया में और वो इंडिया में आकर एक टेक्नोलॉजी कभी भी वापस नहीं ले जा पाए और वो लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, और वो टेक्नोलॉजी थी जुगाड़। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैं अभी जस्ट बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे पास में कुछ दिक्कत हो गई थी, मतलब अपने घर के आसपास, तो हम लोगों ने सोचा इस पर क्या किया जाए, और एक अंकल आए, उन्होंने कुछ जुगाड़ किया, उसमें हो गया ठीक, मतलब हम लोगों के पैसे भी बच गए, सब कुछ बच गया। तो ये चीज़ होती है जुगाड़, एंड ये वर्ड कहाँ से आया मुझे कुछ समझ नहीं आता, मतलब एक जुगाड़ नाम का शब्द आया, और मैं कह रहा हूँ इंडिया का असली सुपर पावर है जुगाड़, क्योंकि जुगाड़ जैसे सुनते ना तो फिर हमें लगता है कि हाँ एक क्रिएटिव सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो, चाहे ऑफिस हो या फिर हो घर या फिर हो ट्रैफिक, हम हर जगह जुगाड़ लगा लेते हैं, और इस पे आप लोगों के पास भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी। क्योंकि ऐसा होता है, देखो एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम था जहाँ पर गाड़ी बाहर नहीं आ पा रही थी, जस्ट बिकॉज नया नया दरवाज़ा बना था, तो मैनेजर ने कहा चलो अब दरवाजे को तोड़ दो, किसी ने बोला दरवाजे को चौड़ा कर दो, किसी ने कहा दरवाजे को लंबा कर दो, तो बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने बोला सर आप लैम्बोर्गिनी के टायर के हवा निकाल दो तो ये अपने आप नीचे आ जाएगी और आगे निकल जाएगी, दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है जुगाड़। तो आप लोगों के पास भी काफ़ी सारी कहानियाँ होंगी, शेयर कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। नंबर है जी 9654896896। वापस आकर बात करते हैं स्कूल के दिनों की, फरीदाबाद में किस स्कूल से पढ़े हैं उसके बारे में बात करेंगे मगर इस गाने के बाद।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: campeão, pendi a ver taca já em pena.
1: चला अर्जुन शुरू हो जा।
2: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
1: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो।
1: इरशाद
2: अरे आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
2: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन है?
2: रोडवेज वाले।
1: ओके ओके।
2: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ
2: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
2: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
2: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुने

शुरुआत में, मतलब आज के दिन की शुरुआत में जब मैं आया था तो मैंने सभी से एक सवाल किया था, और जो भी नए नए लिसनर्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं उनसे भी सवाल कर लेता हूँ कि क्या आप लोगों को कभी स्कूल की याद नहीं आती? नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी से स्कूल के बारे में भी बात कर ली जाए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड स्कूल की बातें करते हैं ना तो ऑलमोस्ट सबकी मेमोरी कॉमन हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। फर्स्ट क्रश मानो या मत मानो, स्कूल में सबको एक बार तो ठीक है पढ़ाई करने जाते थे, बट हाँ हो जाता है, नज़रें चार हो जाती थी। खैर उसको भी साइड कर देते हैं। एनुअल फंक्शन, दिस वाज द मेन फंक्शन जिसकी हम सबको इंतज़ार रहता था, एंड उसमें परफॉर्मेंसेज होती थी बहुत सारी, एंड पीटी पीरियड और साथ में गेम्स पीरियड, हफ्ते में एक गेम्स पीरियड मिलता था। और बता दूं वो भी अगर कोई मैथ्स की टीचर आके ले लेती थी ना जब, तब इतना ज़्यादा बुरा लगता था और गुस्सा लगाता था। खैर गुस्सा था, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, बट स्टिल। एंड पनिशमेंट या फिर बोर्ड एग्जाम, वो सारी स्टोरीज नॉस्टैल्जिया लेकर आ जाती है, नॉस्टैल्जिक कर देती है हम सबको। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कौन कौन सी यादें मतलब वापस याद आती है स्कूल के दिनों की, क्योंकि मुझे तो वो याद आता है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता हम लोग पानी पीने के लिए भी पूछते थे क्या टीचर से। दिस इज़ नॉट डन यार, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान का हक है, वो पूछना क्या है उसमें, पियो आराम से पियो। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलाते रहूँगा, और उन्हीं में से जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है इसको थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर दी जाए।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने की फिल्में बहुत अच्छी हुआ करती थी, हमारे जमाने के गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे। नो डाउट गाने तो सच में बहुत अच्छे थे, मैं ये बात कर रहा हूँ हमारे फादर की, मदर की, या फिर हमारे पेरेंट्स की लैंग्वेज। सबके डायलॉग्स यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल तो नहीं कहेंगे बट हाँ इंडियन ज़रूर होते हैं। इंडिया में सब पेरेंट्स के डायलॉग सेम है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड एंड एंड एंड एंड एक डायलॉग जो कि हर मम्मी ज़रूर बोलती है, फ़ोन को आग लग जाए या फिर आग लग जाए तेरे फ़ोन को, और इसके अलावा फ़ोन छोड़ दो और पढ़ाई करो। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब उस टाइम हमारे पास वो वाले फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, बट स्टिल सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता था कि फ़ोन छोड़ दे, इस फ़ोन को आग लग जाए, ये और वो। और फिर हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में इतने रुपए में चीज़ें मिलती थी। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप लोगों ने अपने ज़माने में ये क्यों नहीं किया, मतलब कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया जाता तो आज क्या ही हो जाता उसका, है कि नहीं। चलिए उसको भी अभी साइड में कर देते हैं। और एक डायलॉग तो सबको सुनने में ज़रूर मिलता होगा, जब भी आप लोग अपने कमरे को फैला दो तो एक डायलॉग आता है, घर है ये होटल नहीं है। और ये डायलॉग तब भी आता है जब आप घर में लेट आओ, घर है ये होटल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कि हर फैमिली में सुनने को मिलते हैं पेरेंट्स के द्वारा। बताइए कि जरूर अगर आपके पास भी कोई डायलॉग्स है तो। अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, मगर उन्हीं में से बादशाह बाजी की आवाज़ में गाना है, मतलब उनके साथ एक लेडी भी है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: मेरे।
1: एक मैसेज आता है फोन में और उससे हमारी दिन भर की टेंशन या फिर मैं बोलूं पूरे महीने भर की टेंशन खत्म हो जाती है। और वो मैसेज बहुत सारे लोगों के पास आता है और वो मैसेज होता है, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। फिर उसके बाद जो चेहरे पे खुशी होती है वो तो शायद सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये तो आप लोग मान ही रहे होंगे कि हाँ, जब सैलरी आती है तो सबका दिन खुश हो जाता है, मुंह खुश हो जाता है, मूड खुश हो जाता है, मगर सैलरी टिकती कितने दिन है, टिकेगी कैसे, मिलती जो कम है। खैर बता दूं आपको, मंथ के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का जो सफ़र होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। सैलरी क्रेडिट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, गर्लफ्रेंड को कुछ चाहिए वो दिला देते हैं, घर वालों को कुछ चाहिए वो दिला देते हैं, खुले हाथ का खर्चा, हम तो राजा हैं जी। और फिर धीरे धीरे आता है मंथ एंड। मंथ एंड में अगर गलती से भी अकाउंट बैलेंस देख लो तो फिर एक दर्द सा उठता है सीने में, और वो दर्द ऐसा होता है कि यार अब बस चलाने हैं 5-6 दिन और वो कैसे जैसे चला लेंगे। बट मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, देखो अगर आप लोग सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है और सिंगल सैलरी के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। आप लोगों को अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर हाँ बिना पढ़े लिखे मत करना। और उसके अलावा बहुत सारी जगह और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा साइड हसल भी शुरू कर दो, अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा फूड कार्ट ही लगा लो, क्योंकि फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है नेवर एंडिंग है। और अगर चल गया तो सोचो एक साइड बिजनेस आप लोगों का हो जाएगा और आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। मैंने बहुत ज्ञान दे दिया मगर अभी आप सभी के लिए गाने चलाने का वक्त आ गया है। तो एक गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपने जीवन के 70 साल बिताते हैं और फिर उसके बाद आपके पास गाड़ी भी है, तो समझ लीजिए आपने कम से कम 5 से 6 साल सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में बिताए हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो, वीकेंड हो और फिर उसके बाद घर वालों में से किसी की जिद हो जाए कि चलो दिल्ली चलते घूमने के लिए, या फिर कोई फ्रेंड बोल दे कि दिल्ली चलते घूमने के लिए, वो भी गाड़ी से, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, गाड़ी से जाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है कि इट्स नॉट बेरेबल। किसी भी टाइम चले जाओ, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश में चले जाओ, तो फिर तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे मान के चलो, हाँ ये तो ट्रैफिक में ही हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है ना जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल देती है, बार बार कंटिन्यूसली हॉन्किंग करते हैं लोग, पै पै पै पै, इतना सरदर्द हो जाता है ना इस चीज़ से। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। खैर, ट्रैफिक में फंसना एनसीआर वालों की डेली लाइफ का पार्ट है, हम सभी का, फरीदाबाद वालों के लिए भी डेली लाइफ का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, काफ़ी बार ट्रैफिक में फंसना ना फनी भी हो जाता है। ऐसे जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उसने बहुत सारा पानी पी लिया, अब उसको नेचर्स का कॉल आया है, नेचर का कॉल आया है और अब उसको जाना है, बट ट्रैफिक में आप लोग फंसे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग आज तक सबसे ज़्यादा वियर्ड जगह पे कहाँ पे फंसे हैं, मतलब ट्रैफिक में ही। मैं अगर एक स्टोरी बताऊँ मेरी खुद की, साल 2024 की बरसात में दिल्ली गया था, 5 बजे निकला था दिल्ली से वापस, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, साकेत से 5 बजे निकला था और मैं 10:30 बजे घर पहुंचा हूँ फरीदाबाद में। सोचिए 5.5 घंटे इतनी देर में तो मैं नैनीताल पहुंचा था। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे रेडियो महारानी के नाम से मिल जाएंगे। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए एक AI ओरिजिन वाला गाना ओनली ऑन 89.6।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ला ला ला ला।

आज ना ऑफिस में ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे एंड एकदम से डिस्कशन चालू हो गया कि जब हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे ना, वो टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट था। और मेरे ख्याल से इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास भले ही फोन नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, बट सबके पास टाइम बहुत ज्यादा हुआ करता था। बातें करते थे लोग, खूब सारी बातें करते थे, और फिर उसके बाद जब शाम को लाइट चले जाती थी, फिर घर के बाहर बैठ के, आंगन में बैठ के बातें करते थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। हम सभी ने 90 का दौर देखा है, 2000 का दौर देखा है, 2010 का दौर देखा है, हमने 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G होते हुए देखा है। मगर पुराने जो कार्टून थे ना, वो मज़ा आज के कार्टून्स में है ही नहीं। और फिर उस टाइम एक वो फ़ोन था हमारे पास नोकिया वाला, जिसमें वो सांप की गेम हुआ करती थी, वो तो नेवर एंडिंग थी सांप वाली गेम। और उसके साथ साथ वो फ़ोन भी नेवर एंडिंग था, क्यों? क्योंकि टूटता ही नहीं था। छत से गिर जाए कुछ नहीं होता था उसको। एंड उसके अलावा SMS के पैक आते थे, याद है आप लोगों को? एक स्क्रैच कार्ड आता था, उस पर स्क्रैच करते थे, फिर उसका कोड डालना पड़ता था, तब जाके आपके फ़ोन में रिचार्ज होता था। ये सारी चीज़ें याद करते हैं ना हम लोग, तो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। MP3 प्लेयर्स हुआ करते थे सबके पास, किसी न किसी के पास तो होता था, वॉकमैन हुआ करते थे, और उस टाइम फेसबुक नहीं था, बट ऑर्कुट नाम की एक चीज़ थी, उसमें स्क्रैप बुक हुआ करती थी, याद है ये सारी चीज़ें? तो ये सब चीज़ें जब याद करते हैं ना, तो बहुत सारी मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और वो बचपन का स्नैक चीटोस, कैसे भूल सकते हैं उसको। चलिए अभी हम लोग ये पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, मगर अभी गाना नया वाला चलाऊंगा आप सभी के लिए। जो ये बैकग्राउंड में बज रहा है, इसको थोड़ा सा लाउड कर दिया जाए। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

साफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, RWA का जो ग्रुप है वहाँ पर भी इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे मैसेजेस भेज देते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। आई डोंट नो कौन सा डोपामीन मिलता है इन अंकलों को जो सुबह सुबह अंकल आंटी गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं। नो ऑफेंस, किसी को कुछ नहीं कह रहा मैं, बट देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है विशिंग करने का। तो कुछ लोग गुड मॉर्निंग लिखते हैं, कुछ लोग फोटोज भेजते हैं, कुछ लोग फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेजेस को। और फैमिली गॉसिप, फैमिली जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें तो महासंग्राम हो जाता है कभी कभार क्योंकि अगर आपने कोई फोटो डाल दी और फिर उसके बाद लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर, कुछ भी मतलब आप अचीवमेंट डालते हो तब तो फिर लाइक्स पे लाइक्स होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें ना व्हाट्सएप ग्रुप तक ही ठीक है क्योंकि जब सामने मिलते हैं ना तो फिर कौन किसकी सुनता है, बच्चे अलग चिल्ला रहे हैं, जो बड़े लोग हैं जैसे अगर मान लेते हैं फैमिली गैदरिंग हो रही है उसमें जो बड़े लोग हैं वो अलग ही लेवल पे चिल्ला रहे होते हैं। तो फैमिली ग्रुप्स में होने वाली जितनी भी फनी सिचुएशंस है वो मेरे ख्याल से कोई भी और चीज़ रिप्लेस ही नहीं कर सकती। मानते हो कि नहीं? अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो मैं मनवा दूंगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए लव आजकल मूवी से ही गाना, मैं हूं द मोस्ट वांटेड।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

अगर आप फरीदाबाद में ही पले बड़े हैं तो फिर आप लोग फरीदाबाद में कुछ कुछ ऐसी जगह जानते होंगे जो कि कोई और जानता ही नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल खाने पीने की। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई दुकान खुलती हुई देखी होगी, और आज उस दुकान की कम से कम 3 से 4 ब्रांचेस बन गई है कि नहीं। और मैं बात करना चाहता हूँ आज कुछ खानों की दुकानों के बारे में। आप जब ओल्ड फरीदाबाद की तरफ जाते हो तो वहाँ पर ना एक वो सब्जी मिलती है बहुत टेस्टी सी, अब मुझे उस सब्जी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बट वो प्याज की सब्जी होती है, वो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना उससे सब्जी बनती है, आलू प्याज वाली सब्जी होती है वो, और बहुत टेस्टी होती है। एंड ऐसे ही सेम टू सेम ओल्ड में एक फ्रूट चाट मिलता है, और साथ में गुड्डू कचौड़ी को कौन भूल सकता है तो और एक पकौड़े वाला भी है ओल्ड फरीदाबाद में, वो भी अमेजिंग है, मेरे को किसी के नाम नहीं पता। अगर आप लोगों को नाम पता है ना आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और कुछ दुकानें ऐसी हैं जैसे कि सेक्टर 7-10 की अगर मैं बात करूँ, 7-10 की मार्केट, जो 7-10 का डिवाइडिंग रोड है, तो वहाँ पर बहुत सालों पहले, मुझे आज भी याद है बचपन में पापा लेके जाया करते थे, वहाँ पर एक फलूदा वाला हुआ करता था, तो उस पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी। आई डोंट नो अब वो है भी या फिर नहीं, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर वाली शॉप थी वो। तो अगर आप लोगों ने भी वो ट्राई किया है तो शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किस दुकान की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करें NIT की, तो NIT में लवली चाट भंडार किसको नहीं पता, NIT में संजय छोले भटूरे किसको नहीं पता, या फिर जग्गी स्वीट हाउस किसको नहीं पता, सबको पता है, और इनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो आप लोग बताइए आप कौन से एरिया से है और वहाँ का फेमस फूड क्या है। नंबर है जी मेरा 9654896896। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर मैं आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, दिल लगाना मना था, मेरी आवाज़ में नहीं अच्छा लगेगा मगर इस वाले आवाज़ में सच में अच्छा।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

अभी ना मैं बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद के बड़खल झील के बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एक ना छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, और इस पौधे को कहते हैं, मतलब नाम नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, इस पौधे को कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होती है ना समुद्री जीवों की या फिर पानी के अंदर रहने वाले जीवों की, वो ख़त्म कर देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो ये छोटे छोटे पौधे से उगे हुए हैं जो बड़खल झील के ऊपर उग गए हैं पूरे के पूरे, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये इंडिया के थे ही नहीं, मतलब इंडिया में थे ही नहीं, एक भी नहीं था। मगर अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या हुआ, उन लोगों ने कहीं ट्रैवल किया और उन लोगों को वहाँ पर ये बहुत अच्छा लगा, तो वो एक दाद पीस उठा के ले आए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने दिल्ली के महल के सामने, मतलब दिल्ली में अपने जो भी उनका ऑफिस था उसके सामने उन्होंने पौंड में रखे, और वो पौंड से निकल कर जब वो बढ़ गए पौंड में, तो किसी ने उठा के उसको नदी में फेंक दिया या नाले में फेंक दिया। और फिर उसके बाद तो ये बढ़ते ही चले गए, और ऐसा ही सेम टू सेम अब बड़खल झील में हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ ये इतने ढीठ होते हैं ना कि अगर आप इनको पूरा का पूरा साफ भी कर दोगे, और अगर सिंगल पीस भी रह गया, फिर सिंगल जड़ भी रह गई अगर, तो फिर ये फिर से उग आएंगे, और वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही तेज़ी के साथ मेरी सैलरी भी बढ़ती जाए तो मज़ा ही ना आ जाएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, बातें और गाने तो यूँ ही चलते रहेंगे। मगर हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप बड़खल की तरफ कभी भी जाते हैं घूमने के लिए, तो एक गुजारिश आप लोगों से करूँगा कि प्लीज़ अपने फरीदाबाद को स्वच्छ रखने में हेल्प कीजिए। हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, तो प्लीज़ कूड़ा डस्टबिन में ही डालिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ में ये एक अमेजिंग सा गाना सेम बीफ, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

जब भी मैं फरीदाबाद के बारे में बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदार नागरिक तो बनना ही पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। गाना काफी अमेजिंग था, बट अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद के बारे में, वो कुछ ऐसी है कि हम लोग जिम्मेदार नागरिक नहीं है। आई नो सुन के बुरा लगेगा, बट ये रियलिटी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो फिर हम लोग अपने शहर को अपना घर नहीं मानते। क्योंकि क्या आप लोग सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आप लोग पूरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो? पूरे मींस पूरे, हाँ नहीं करते होगे आप लोग भी। काफ़ी बार आप भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते होगे, जस्ट बिकॉज कि वो तोड़ रहा है तो मैं भी तोड़ देता हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर जब गाड़ी चला रहे हैं, कुछ खाया, राह पर कहाँ जाता है, आप बोलते हो कि डस्टबिन नहीं है तो कहाँ डालें? अरे अपनी गाड़ी में रखिए उसको, जब घर पहुँच जाएंगे, घर पे तो डस्टबिन है ना, तो घर पे डस्टबिन में डालिए। जो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आते हैं वो आएंगे और फिर उसके बाद वो आपसे गार्बेज कलेक्ट करके ले जाएंगे। और इसके अलावा काफ़ी बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि सड़क किनारे कोई इंसान पेड़ों को पानी दे रहा होता है। गलत काम है, सबसे ज़्यादा गलत काम है वो, जो कि लोग मानते ही नहीं है। ऑल दो मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं भी ऐसी इनमें से कुछ ना कुछ हरकत मैं भी कर देता हूं। कभी कर दिया होगा मैंने भी गलती से कि गाड़ी से रैपर बाहर फेंक दिया होगा, बट अब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये सब हरकत ना हो दोबारा। और अभी मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग में से कोई भी ये सब हरकतें नहीं करता तो वेल एंड गुड है, आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और अगर जो भी सुन रहा है उसने ऐसी कोई भी हरकत करी है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ करा है, तो प्लीज़ बस यही गुजारिश है कि अपने फरीदाबाद को अपना घर समझिए और उसको और ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाने में हेल्प कीजिए। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे। उन्हीं में से ये गाना बोहेमिया की आवाज़ में मिक्स मैशअप ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

नीतू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

उच्चा नदी कुड़ी बदला दी बैंड। और आप सभी को बता दूं कि आज फ्राइडे की शाम कुछ ज्यादा ही अच्छी होने वाली है, और साथ ही साथ क्योंकि फ्राइडे है ब्रो और मेरा जाने का टाइम हो गया, तो मैंने तो पूरे प्लान्स बना रखे हैं। आप लोगों के भी कोई ना कोई तो प्लान्स होंगे ही, शेयर कर दो फटाफट मेरे साथ। नंबर है जी 9654896896। फरीदाबाद में ही अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ, मुझे भी ले चलो यार अपने साथ। लाइक मेरा बड़ा मन है घूमने जाने का, सैटरडे संडे एंजॉय करूंगा, कहीं घूमने जाएंगे, पार्टी शाड़ी करेंगे आज तेरे नाल। और डायनामाइट तो कुछ भी नहीं है, खैर मैं डायनामाइट ये मौसम बना पड़ा है, कभी भी फट जा रहा है, कभी भी साफ हो जा रहा है, मतलब कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी नहीं हो रही है। सुबह सुबह आज मतलब मूड खराब हो गया मेरा आज पूरे दिन भर। तो चलिए अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत यहाँ से, मैं मिलूंगा आप सभी को फिर से कल शाम, मंडे की शाम मिलते हैं आप सीधे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, वापस आएगी गीत विदेशबाजी, यहाँ प्यार भरी बातें लेकर, प्यार भरे नगमे लेकर। तो अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर। बहारा बहारा मैं नहीं बोल रहा, ये गाना बोल रहा है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: अंगूठाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और इस बड़ी जिंदगी को छोटी ना बनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

0: गया।
1: इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ ताकि बहुत सारी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है फराज। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना? फराज के नगमे यहाँ पर मैं कुछ छेड़ने वाली हूँ, कुछ उनकी बातें जो वो कह गए, उनकी बातें दिल से निकली और लोगों के दिल तक सीधा पहुंच गई। ऐसी ही बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगी। और फराज की बात हो रही है और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और बहुत ही गहरी बात कह दी है फराज ने इस शायरी के थ्रू। वो कहना चाहते हैं कि अक्सर हम जिन अच्छे लोगों को सोचकर उनके पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत खूबसूरत है, जैसा बाहर से दिखता है तो शायद अंदर से भी वैसा होगा। लेकिन यहाँ फराज कहना चाहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हो सकता है कि जो खजाने आप ढूंढना चाहते हैं, जो किसी इंसान की इंसानियत आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको खराबों में मिल जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। फराज के बारे में बातें चल रही हैं, उनकी खूबसूरत शायरी जो मुझे लगता है हम लोग आए दिन सुन ही लेते हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पर शायरी का जो एल्गोरिदम आया है ना वो बहुत खास है। चलिए कम से कम हम वो पुरानी शायरियों से तो रूबरू हो रहे हैं, तो इसी बात पर ना मुझे फराज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आई है कि जहां के शोर से घबरा गई क्या, तुम अपने घर को वापस आ गए क्या। यहां कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। ना थी इतनी कजा ताजा मुसाफत, पुराने हम सफर याद आ गए क्या। मेरी गर्दन में बाहें डाल दी हैं, तुम अपने आप से उकता गए क्या। यानी कि फराज इस शायरी में कहना चाहते हैं जो इंसानियत, शायद ये हमारे जितने भी शायर थे और जितने भी कवि थे ना, इनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये शायरी में यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत कैसे गायब हो जाएगी इंसानों से, कि यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, अगला गाना है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्कबाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत, और फराज की बातें चल रही हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फराज की वो शायरी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, स्पेशली इस फिल्म के टाइटल को टच करती हुई वो शायरी है। जब कोई इंसान आपको बहुत टाइम बाद मिलता है ना, और वो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस इंसान को अपना नहीं पाते हैं, और अक्सर आपके दिल में ये बात रह रह कर आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, क्योंकि तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का भी हौसला है मुझे। दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। और फराज ने इस बात के थ्रू ना उन हजारों लोगों को एक कड़ा तंज कसा है, जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ना मेला है, बस उन्हें लोग ही लोग चाहिए। और यहाँ वो कहना चाहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, उन्हें सिर्फ एक हम सफर चाहिए, पूरा एक मेला नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। एक मुसाफिर जो है, एक जो इंसान है, वही मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। तो फराज की खूबसूरत बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्कबाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, सेफ रहो, स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और बातें चल रही हैं फराज की। और फराज की एक शायरी अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे ना इस शायरी से वो बात याद आई कि जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, होता है ना अक्सर हमारी जिंदगी में ये बात, मुझे लगता है हर किसी के साथ हो ही जाती है, जब वो जमाने के लिए नहीं बदलते एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाते नहीं हैं, नजरें बचाते हैं। इसी बात पर लिखा है फराज ने कि दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों, तू कभी चांदनी थी और धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे की चाहत को अब भुलाए हुए हैं हम दोनों। इश्क कैसा कहां का अहद फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों। जब दो लोग एक दूसरे से ही अजनबी हो जाते हैं, इस पर फराज ने बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिखी है। ऐसी ही कुछ बातें और मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज में ये गाना है, और देखिए गाने का टाइटल भी खूबसूरत है और फराज की जो ये अगली शायरी है ये भी खूबसूरत है, क्योंकि इन्होंने खूबसूरत किसी शख्सियत के लिए लिखा है जिनसे शायद या तो ये प्यार करते थे या किसी के लिए भी इन्होंने लिखी है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे उसे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सोचे जब फराज ने इतना खूबसूरत लिख दिया है तो वो शख्स कितना खूबसूरत होगा। और फिलहाल वक्त है यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत से गाने का, गाना है अगला शोर इन द सिटी से साइबो गाना है, और इसके बाद मैं रेट्रो इश्क लेकर आ रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, इंतजार कीजिए और फिलहाल गाना सुनिए।

साथ में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपर हिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठते हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है। और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए। और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी, ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसके बारे में बातें होंगी, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है,

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए OTP पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहें, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कबीर
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
2: जाने कहां गए वो दिन।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
5: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
6: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

काम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 at just ₹599. Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

चक्कर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।

0: दिन।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: पुष्पा, I hate water wasting रे। जा, जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से

0: महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों
1: शादी तो बर्बादी है,
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है,
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय,
0: सुनो तो मोना, सुनो तो सुनो तो,
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।